तेरे दर्शन को हम बारे। आप जी दी पवित्र बाणी विचों ए शब्द किवें अकाल पुरख तो सड़ के जा रहे हैं, किवें बलिहार जा रहे हैं। आख्या है वाहिगुरु मेरे ते कृपा कर, मैं तेरे दर्शनों तो बलिहार जांदा रहा। ए शरीर दुख विच होवे सुख विच होवे, मैं तेरा नाम न विसरे, तेरा शुकराना न भुले। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी दी पवित्र बाणी आप श्रवण कर रहे हो। जितनी भी आपने बाणी दी रचना कीती, एक एक अखर ते चल के विखाया। जे आप जी ने लिखिया है, जैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, जैसा अमृत तैसी बिख खाटी, जैसा मान तैसा अभिमान, जैसा रंक तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत, नानक ओ पुरख कहिया जीवन मुक्त। संसार विच ऐसा होके विचरना बड़ा मुश्किल है कि जैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, सोने नू और मिट्टी नू एक समान समझना, मान और अपमान नू एक समान समझना बड़ा मुश्किल है, अमृत और जहर नू एक समान समझना कोई मखौल दी गल नहीं। पर धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने एक एक अखर ते चल के विखाया। साई मियां मीर जो समय दे पूर्ण पुरुष सन, जिन्हां ने श्री हरिमंदर साहब की नींह रखी सी, जद ए सुखमनी साहब जी की पवित्र बाणी सुनी तां बेनती कीती, गरीब निवाज कोई ऐसा ब्रह्म ज्ञानी संसार विच है भी सही जेड़ा सोने ते मिट्टी नू एक समान समझे, अमृत और जहर नू एक समान समझे, मान और अपमान नू एक समान समझे, कोई है भी सही ऐसा मनुख। तां धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने कहा, मियां मीर जी समा आवेगा तुहानू आपे ही पता लग जाएगा भई ऐसा मनुख है जां नहीं। ते जदों समा आया, धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी तत्ती तवी ते बैठे हन, किथे आप दा पवित्र शरीर मखमलिया और सोहणियां सेजावां ते बैठदा सी, मखमली गद्दियां ते बैठदा सी शरीर। हजारां प्यार वाले श्रद्धालु गुरु के सिख फुलां दी वरखा करदे सन, सैकड़े गलां विच हार पाउंदे सन, सिर ते छतर अते चौर झूलदे सन। किथे इतना सत्कार ते किथे अज धन गुरु अर्जन देव पातशाह तत्ती तवी ते बैठे हन, अग बल रही है ते चौर दी थां ते गर्म रेते दे कड़छे साहिब जी दे शीश विच पाए जा रहे हन, ते गुरु अर्जन देव पातशाह फिर भी मुस्करा रहे हन। चेहरे ते कोई आभा है, ओही नूर है जो सुशोभित मखमली गद्दियां ते बैठ के वेख्या सी, अज ओही नूर ओही आभा अज गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे चेहरे ते देख के साईं मियां मीर जी दे नैन कटोरे भर आए। गरीब निवाज एक ही कौतक है, आप समर्थ पुरख हो, आप चाहो ता एक अख दे फोर विच धरती नूं पुठियां कर सकदे हो, एडी समर्था दे मालक हुंदिआं भी आप इतना कष्ट सहार रहे हो। उचारण करो श्री धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने कहा, साईं मियां मीर ओ बचन चेते करो,
कदे तुसी पुछया सी कि कोई ऐसा पुरख है जो मान और अपमान नू एक समान समझे, सोने और मिट्टी नू एक समान समझे, अमृत और जहर नू एक समान समझे। क्या गरीब निवाज, आप जी ने एक एक अखर ते चल के दस्या, पर मैं ए बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आपका शरीर तती तवी ते बैठा होवे। सारी प्रकृति सारे आप दे हुकम विच खड़ोते होन, ए पातशाही तां क्या है, लोक परलोक दे आप पातशाह होंदे होए भी इतना कष्ट सहार रहे हो। तां धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने कहा, मिया मीर इस चम दे नाल प्रीति क्या करनी है, प्रीति चाम से क्या किया, जे प्रीति करनी है ता अकाल पुरख वाहेगुरु ईश्वर दे नाल प्रीति कर। इस चमड़े दे नाल क्या प्रीति करनी है, ए ता एक दिन मिट्टी हो ही जाना है। तन तप रहा हम शांत हैं हरि नाम से, गुरु अर्जन देव पातशाह कह रहे जे साडा तन तप रहा है गर्म रेते दे करशे पै के तत्ती तवी ते, तो कोई गल नहीं की होया, क्योंकि आपने लिखिया सी तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाए, ते ओई कौतक करके आप विखारे सन। आख्या मिया मीर तन तप रहा हम शांत है हरि नाम स्यो, जे तन तप रहा है तो की होया, नाम जप के साडी आत्मा साडा मन तो शांत है ना। प्रीति चाम स्यो क्या हुआ, मिया मीर ने सेजल नेत्रां दे नाल आख्या, हे गरीब निवाज मैं ए दुख सहार नहीं सकदा, गर मुझ को हुक्म दीजे जालम को जान से मारूं, जे तुसी नहीं कोई शक्ति विखाउंदे तो मेरे विच समर्था है, जे आप कृपा करो मैनू हुक्म करो तो मुझ को हुक्म दीजे जालम को जान से मारूं, अर उनकी शाह रग पर रख दूं अभी दो धारा। गरीब निवाज सच्चे पातशाह जी ने ओ शांत स्वरूप ओ बाणी दे बोहत ओ नाम दी मूरत गुरु अर्जन देव पातशाह, सुनते ही सतगुरु ने शांति का कुल्फ खोला, पाना ही पाना कह कर जलते हुए को ठारा। आख्या भाई असी पाना मनना है और पाना मन के दसना है, अगो किस तरह सेवक मनंगे जे मैं आप नहीं मनांगा, उच्चारण करो श्री। मिया मीर ने आख्या, गरीब निवाज मैं ए वेख नहीं सकदा के आप दे रोम रोम विच छाले पै चुके हो, ऐसा दुख। तां गुरु अर्जन देव पातशाह मुस्कुरा के कहन लगे, मिया मीर जितने जिस्म पे पड़ेंगे शाले, जितने जिस्म पे पड़ेंगे शाले उतने सिख होंगे सिदक वाले, उतने ही प्यार वाले सेवक होंगे भाई, इसलिए असली पाना मन के दसना है। आज इस तरह पतंगा आके क्षमा तो कुर्बान हो जाता है, जे सेवक अपने मालिक तो कुर्बान नहीं होया तो सेवक कदा होया, उच्चारण करो श्री। इसलिए हजूर बख्शिश कर दिया न, हे वाहेगुरु तेरे दर्शन को हम बारे, तेरे दर्शना तो मैं बलिहार जाता हां, सदके जाता हां, और यही दात तेरी।

दीप सवय करके अर सात समुद्र की मत कहो। काट वनस्पति सगरी दिख बहु के लेखन काज बने हो। सारसता पकता करके जुग कोट गणेश के हाथ रखे हो। काल कृपाण न बिनती बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न कूट बराद हमारे अनक विधि समझाओ, अनक विधि समझाओ। हम अज्ञान अलप मत थोरी तुम आपन बिरत रखाओ। तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहे

दुष्ट दमन तू संसार ते जा। कहंदे ने मेरा मन नहीं करदा तेरे चरणा तो, पर हुक्म भी मनना है। पर बार बार कह रहे ने मेरा दिल नहीं करदा, किसे होर दी ड्यूटी लाओ। प्यार नाल सत्कार नाल, किसे जोर जबरदस्ती नाल नहीं, थापड़े दे दे के जिवें प्यो पुत्र नूं समझांदे, बच्चे नूं आखदे ते मेरे पातशाह जी दे की वाक हन, आप फरमांदे।

तो बिंदु जा और न कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। तो बिंदु जा और न कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। क्या कहिए किस आस सुनाइए जो कहना तो प्रभु जी पास। सब कुछ किता तेरा वरते सदा सदा तेरी आस। जी दे वड्याई ता तेरी वड्याई

जो तो करे करावे स्वामी हा मसलत परवा चरण शरण हम अनाथ ना थकन अपनी कृपा करे चरण कमल नानक आरा दे किस दिन आम के पर परमेश्वर गत नारायण तन गोपाल साखी।

सुखता दे मध्यन होत साधु तुरे आवण जान रेखित पाई जन मरण के मिटे वसूरे गुरु नारायण दाई गुरु गुर सच्चा सिद्धनहार गुर तुठे सब कुछ पाया जन मानस सब बनिहार हर गुण गाओ।

कोई भरोसा नहीं इस शरीर दा। नाम दा तुलहा तैयार कर जिदे तो तू चढ़ के पवजल पार कर जावे। सब कहंदे ने समा किसे दी इंतजार नहीं करदा। गुरसेवा ते भगत कमाई

0: गुंग मुख तब कैसे गुण गई है।
1: सतगुरु कहने जे हुण नहीं जपदा फिर कदू जपेगा।

पुत्र दे प्यार विच व्याकुल होई महापुरुषां दे दर ते पुजी अपने पुत्र नूं सामने रखिया।

खुश होना चाहिदा है, तैनू तेरा पति परमेश्वर मिलिया है। रोना मैनू चाहिदा है जिनू अजे पति परमेश्वर मेरा मालक ओ प्रभु नहीं मिलिया। मालक रहमत करे, मैनू भी मेरा पति

आप संगत में बैठे हैं, यहाँ का रंग अपना है, कहीं जुआ चल रही है उसका अपना रंग है, कहीं बनिया बैठकर तिजोरी भर रहा है वो अपने आनंद में बैठा है, मौज कर रहा है। कहीं अफीम की अफीम खा के अपने आनंद में बैठा है। बाबा जी कहते हैं सबको अपना अपना रंग प्यारा लगता है। हजूर कहते हैं

भूखे शेर को मांस मिल जाए। झपट पड़ता इसी तरह गुरु प्यारों को सत्संगत का आनंद मिले तो भागे हुए आते हैं। भूख है ना अंदर, शेर को मांस की भूख है, बहादुर को लड़ने की भूख है। बाबा जी कहते हैं कंजूस को पैसे की भूख है, वो जमा करता ही जाता है, चाहे बेटा ना हो औलाद ना ही हो, फिर भी उसे कंजूसी की आदत पड़ी। बाबा जी कहते हैं ऐसा ही भगवान के भक्तों को इस संगत का प्यार रंग, जहाँ जहाँ पर प्रभु ने लगा दिया वो वहीं लगे।

कतहु सुचेत होय के चेतना को चार किया, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो। साहिब गुरु गोविंद सिंह साहिब जी बहुत प्यारी रचना अकाल उस्ताद विच फरमान दी।

आओ भाई आज दे दिन अरदास करिए। पातशाह साडे हिरदे विचों नफरत दी आंधी जो चलदी है उस नूं मिटा। बख्शिश कीती सी आप जी ने भाई कन्हैये उत्ते जिस वेले उसने दुश्मन नूं दुश्मन ना समझिया ते फिर तू सिख हो के सिख नाल नफरत करें गल बनेगी। कदी भी खून नाल खून नहीं तुलदा पानी पाया ही खून तुलदे। नफरत नाल कदी नफरत खत्म नहीं हुई ओदे उते प्यार दा पाना पानी पाना।

कऊ जच गंधर्व उरग कऊ विद्याधर कहु भय किन्नर पिसाच कहु प्रेत हो कहूं हो के हिंदू आ गायत्री को गुपत जप्यो कहूं हो के तुरका पुकारे बांग देत हो कहूं को कुकाब हो के पुराण को पढ़त मत कतहूं कुरान को निदान जान लेत हो काऊ बेदरीत काऊ तांस्यों बपरीत काऊ त्रिगुण अतीत काऊ

कऊ देवतान के दीवान में विराजमान, कऊ दानवान को गुमान मत देत हो। कऊ देवतान के दीवान में विराजमान, कऊ दानवान को गुमान मत देत हो। कहूं इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी सी, कहूं इंद्र पदवी छिपाए छीन लेत हो।

सूरज में सस में नब में जय हेरो तहां चित लाए तहाई। पावक में अर पवन हूं मैं पृथ्वी तल में सो कहां न जाई। व्यापक है सब ही के बिखे कछ पाहन में परमेश्वर नाई। व्यापक है सब ही के बिखे कछ पाहन में परमेश्वर नाही। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे।

भगत जा को आराधे लाख तपीश तपगी साधे लाख जोगिस करते जोगा लाख पोगीसर भोगे भोग तेरा अंत न पारा बाहर तेरा अंत न पारा

दिल्ली के दिलवाली तेरी आज्ञा में चलते तेरा अंत न पारावारिया। रोके रुगेले मग देश के मंगेले भी बंगसी बंगेले पाप पुंज को मालते हैं। गोखा गुन गावे गोखा गुन गावे।

तिन पूर्ण प्रताप पाय सर्व तंग तम फल फूल को फल ते है तेरा अंत न पारा बारिया।

தள்ளிவிடுவது. धरती से ज्यों ज्यों संकट आए, जिन्ना क संकट उन्नी क शक्ति निरंकार ने दे के भेजना अवतार उन्नी क शक्ति. समा होया ते मच्छ अवतार आया, समा होया ते कच्छ अवतार आया, समा होया ते नरसिंह अवतार आया, समा होया 14 कला 16 कला जिनी शक्ति लोड़. ये पहली विशेषता ही कि समा एहोजा जो बनया कल युग बिच, निरंकार ने फिर आप आना किया है गुरु नानक के रूप जिते. पहली विशेषता ही, बाकी अवतार ज्यों जिवें आए तिवें तिवें ड्यूटी देके जांदे रहे. ये पहली विशेषता ही गुरु प्यारे गुरु नानक प्यारे आखो सतनाम. दसवें जामे तो बाद फिर शब्द रूप विच सदा लई धरती ते टिकदे दुनिया दे बेड़े बने लाण लई. जिस दिन तुहाडी अख खुलेगी उस दिन पता लगेगा कि इस शब्द रूप विच गुरु ग्रंथ साहिब गुरबाणी का जिन्हां ने ओट आसरा लिया, इस बाणी ने पता नहीं किन्नियां कानून ब्रह्म ज्ञान की अवस्था च भेजिया है. इस बाणी ने पता नहीं किन्नियां नूं अनुभवी प्रकाश इसकी प्राप्ति हुई है. ये बाबा हरनाम सिंह पुछो मंडी आले रसना ते इन्नी ताकत आ गई जो कहना सो सत, इसकी शुरुआत कितों हुई, बैटरी कितों चार्ज हुई. दरबार साहब की परिक्रमा विच छोटी उम्रे 7.5 लाख पाठ जपजी साहब जी दे गुरु ने सेवा ली.